जै कबे मथा सत आसमान बणाया तू रहमान जे खलकण में का भी घट वधाए न डिसंदे अख फेराए डिस किथे का फोट डिसी थो।

जॾहिं हू उन में उछलाया वेंदा त हू हुन जे गजण जा आवाज़ ॿुधंदा ऐं उहो उभामी रहियो हूंदो। ॼण त इजो थो सख़्तु कावड़ विचां फाटी पवे। जॾहिं बि मंझिस को टोलो फिटो कयो वेंदो त संदसि दारोगा उन्हनि माण्हुनि खां पुछंदा त छा तव्हां वटि को ख़बरदार करण वारो न आयो हो। हू जवाब ॾींदा, हाओ ख़बरदार करण वारो त असां वटि आयो हो, पर असां उन खे कूड़ो भायो ऐं चयोसीं त अल्लाह का बि शइ नाज़िल न कई आहे, तव्हां वॾी गुमराही में पियल आहियो।

ऐं हू चवंदा, जेकर त असां ॿुधूं हा ऐं अकुल हलायूं हा त अॼु हिन भड़कंदड़ बाह जो ॿारणु न थियूं हा। ईअं हू पाण ई पंहिंजो गुनाह बासींदा, पोइ लानत आहे उन्हनि दोज़खनि ते।

छा हिन ॻाल्हि खां बेडपा थी विया आहियो त इहो जेको आसमान में आहे उहो तव्हांखे ज़मीन खां ॻिहाए छॾे ऐं ओचितो ई इहा ज़मीन धुॾण लॻे।

छा ए माण्हू पंहिंजे मथां उॾामंदड़ पखियुनि खे पर खंडड़ींदे ऐं बंदि कंदे नथा ॾिसनि? रहमान खां सवाइ त ॿियो को बि नाहे जो खेनि झले बीठो हुजे। इहो ई हर शइ जी नज़रदारी कंदड़ आहे।

ॿुधायो त तव्हां वटि भला उहो कहिड़ो लश्कर आहे जेको रहमान जे मुक़ाबले में तव्हां जी मदद करे सघे। असुल ॻाल्हि ही आहे त इहे काफ़र धोखे में पियल आहिनि।

या वरी बुधायो तो वो केर आहे जेको तव्हां खे रिज़्क़ ॾेई सघे जेकॾहिं रहमान पंहिंजो रिज़्क़ बंदि करे छॾे। दरअसल इहे माण्हू सरकशीअ ऐं हक़ खां परे भॼण में लॻा पिया आहिनि।

चवन था त जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो त भला इहो वाइदो कॾहिं पूरो थींदो। चवीन त इन जो इल्मु अल्लाह वटि आहे, मां त फ़क़ति खोले खोले ख़बरदार करण वारो आहियां।

छा कॾहिं इहो बि सोचियो अथव त जे अल्लाह मूंखे ऐं मुंहिंजे साथियुनि खे तबाह करे छॾे या खणी असां ते रहम करे, पर काफ़रनि खे दर्दनाक अज़ाब खां केरु बचाईंदो।

0: आतली ते औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252586।
1: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

खे इंटरव्यू डींदे चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु बीठल आहे। पाकिस्तान हुरमिन शरीफ़नि जी हिफ़ाज़त लाइ उते मौजूद आहे। असां सऊदी अरब जो दिफ़ा कंदा रहंदासीं। अमेरिका सऊदी अरब खे 48 F-35 स्टेल्थ वेड़ाक जहाज विकिरो करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। अमेरिकी परडे॒ही खाते जो चवण आहे त 24.3 अरब डॉलर जे हिन सौदे में मुफ़ासिलाती औज़ार, जहाज़नि जा पुर्ज़ा ऐं मेंटेनेंस बि शामिल आहे। जहाज़ मिलण सां सऊदी अरब जो दिफ़ा वधीक मज़बूत थी वेंदो ऐं ख़तरनि खे मुंहुं ॾियण जी सलाहियत बहितर थी वेंदी। पाकिस्तान मके मुआहदे जो पाबंद आहे ऐं सऊदी अरब सां कुलो कुले में मिलाए बीठल आहे। परडे॒ही तर्जुमान पारां सऊदी अरब में हूसी हमलनि जी मज़ामत, हमला नाकाम बणाइण ते सऊदी जे हथियारबंद फ़ौज जी साराह। परडे॒ही तर्जुमान चयो आहे त पाकिस्तान हूसी हमलनि खां पोइ पैदा थींदड़ सूरतहाल खे ॾिसी रहियो आहे। बाबल मंदब जी सूरतहाल ते बि गनती आहे। परडे॒ही तर्जुमान उमान जी साहिली पटीअ ते हिकु जहाज़ मथां हमले दौरान हिकु पाकिस्तानी जे गुम थियण जी तसदीक बि करे छॾी।

दुकान मार्केट्स ऐं शॉपिंग मॉल्स रात 9 वगे बंद थींदा। शादी हॉल्स ऐं ॿियूं कमर्शियल सरगर्मियूं रात 10 वगे ताईं हूंदियूं। होटल रेस्टोरेंट्स ऐं कैफेज रात 11 वगे बंदि कया वेंदा। हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जे वधंदड़ अघनि खे नज़र में रखंदे 3 महीननि लाइ किफ़ायतशारी मोम जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। शादी तकरीबन में रुगो हिकु डिश पेश करण जो फ़ैसिलो। फार्मेस लेबोरेटरीज़ क्लिनिक्स इस्पताल तंदूर ऐं पेट्रोल पंप्स पाबंदीअ खां आज़ाद। टेक ओवे ऐं होम डिलीवरीज़ सर्विस खे बि बंदिश खां छूट। 3 महीननि लाइ परडे॒ही सरकारी दौरनि ऐं सफ़र ते मुकमिल पाबंदी लागू। ज़रूरत पवण ते वज़ीर सलाहकार ऐं सरकारी आफ़ीसर सफ़र कंदा। सरकारी आजियाणनि ते बि पाबंदी। हुकूमत जे ख़र्च ते को प्रोग्राम न थींदो। 50% सरकारी गाॾियूं ग्राउंड थींदियूं। सरकारी गाॾियुनि लाइ तेल जी फराहमी बि घटि आई।

वज़ीर आज़म हुकूमत जी बचत स्कीम जी मंजूरी ॾेई छॾी। इजलास दौरान माली साल 2026-27 जी बजट में नॉन एआरई में 5% कटौतीअ जो फ़ैसिलो। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त घटि आमदनी ऐं मुआशी तौर कमज़ोर तबिके लाइ फ्यूल सब्सिडी शुरू थी वई आहे। मोटरसाइकिल रक्षा ऐं 800 CC ताईं जे गाॾियुनि लाइ फ्यूल सब्सिडी। आलमी मंडीअ में तेल जे अघनि में वाद सबबि समूरी दुनिया महांगाई खे मुंहुं ॾेई रही आहे। बचत स्कीम ते बिना फ़र्क़ जे अमल दरामद कयो वञे।

0: वफाकी हुकूमत डीजल की कीमत में 3 रुपया 47 पैसा वाद कर छी। पेट्रोल जो फी लीटर पूरा 43 पैसा सस्तो। तेल अघर में फेरफार का डीजल जो नव अघ 424 रुपया 92 पैसा थी। पेट्रोल जे लीटर अघ 390 रुपया 79 पैसा मुकरर। नवा अघ 18 सेप्टेम्बर लाइ हूंदा। पेट्रोलियम डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करे।
1: Focus. It's your ally. Through the setbacks.
2: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जडहें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उडाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03125252786।
2: जी हा, 2315525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना देयो निवी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी, नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखबल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल महेरवई, जकच हम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी और द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
3: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अव्हां खे

0: नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज। GFM 90.4।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: अरब टीवी के इंटरव्यू डींदे चयो आए तो सऊदी अरब के सिक्योरिटी लाए पाकिस्तान जो अजम गैर मशरूत आए कें बेजाराना कदमन खिलाफ सऊदी भाइरन सा गड बीठल आयो पाकिस्तान हुरमैन शरीफन जे हिफाजत लाए उते मौजूद आए कें बेजारियत खिलाफ सऊदी जो दिफा कंदा रहंदासी
4: खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा 10 खारजी दहशतगर्द मारजी वया बारूदी सुरंग जे धमाके में पाक फौज जा 6 जवान भी शहीद ISPR मूजिब उत्तर वजीरिस्तान में ऑपरेशन दौरान 6 खारजी दहशतगर्द मारजी वया चकरिन दौरान 4 दहशतगर्दन के जहन भेड़ो कयो वयो कार्रवाई दौरान 6 जवान भी शहीद थिया सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ पारां दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सेज के भेटा पेश कई वही शहीद जवान कौम जा हीरो करार
3: ईरान मुआदो करण चाहे तो पर इन वक्त मुआदे लाय तैयार ना है असा अड़ो मुआदो कंदासी जेको असा लाय बेहतर हों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आए तो अमेरिका ईरान जे एटमी मिजाइल सलाहियत खत्म कर छी आए जेकड ईरान ते हमलो न क्यों आ तो ईरान एटमी हथियार ठाए वे आ
4: कराची के व्यापारी मीर रजा केस की जांच कर अदालती कमीशन पारा पुलिस ऑफिसर के तलब करण बदरा लिखित में जवाब वन जो फैसलो कमीशन गुजरियल डी वारी कार्रवाई जो लिखित में हुक्म जारी कर छो एडिशनल आईजी आजाद खान डीआईजी उमर फारूकी के लिखित में सवाल जवाब डेण की हिदायत
3: मीरपुर साकर वेझो पानी के वारे तां बिन धुरन में जेड़ो पंजवीह जणा जख्मी अस्पताल मुंतकिल वारिया ए डाउड अबरादरी के बिन धुरन में पानी के वारे तां जेड़ो थियो लठियो ए सरोटा लगण सबब धुरन जा पंजवीह जणा जख्मी थिया जख्मीन के इलाज
4: ऐं खैबुर वेझो मुसाफिर ट्रेन तां किल सुञाणप न त अलामा
5: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में ते जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का

0: अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।
1: जब स्कूल जाएंगे डॉक्टर बन जाएंगे, सोचो अब्बा सबका नाम रोशन कर जाएंगे, छोटे शहर में बड़ा अस्पताल बनाएंगे,
2: औरों के काम आएंगे हम।
3: पाकिस्तान में 48% लड़कियां तालीम के हक से महरूम हैं।
4: इस यौम आज़ादी अहद करते हैं लड़कियों की 100% तालीम का, क्योंकि जब लड़कियां पढ़ती हैं तभी कौमें आगे बढ़ती हैं। बेटी पढ़ाओ मजबूत बनाओ।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानू सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230।
5: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।

0: हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
0: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
3: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो नवी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी द्वसास की वरकवल महेरवई, जका च हम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। आप प्रोडक्ट ऑफ कॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि

0: लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो का बचाव जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
5: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Express PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
3: खबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा ॾह फर्जी दहशतगर्द मारिज विया बारूदी स्पेरन जे धमाके में पाक फौज जा छह जवान बि शहीद ISPR मूजिब उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन दौरान छह फर्जी मारिज विया चकरिन दौरान चार दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो कार्रवाई दौरान छह जवान बि शहीद थिया सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शरीफ पारां दहशतगर्दन खिलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस खे भेटा पेश कई वई शहीद जवान क़ौम जा हीरो करार
4: ईरान मुआदो करना चाहे तो पर इन वक्त मुआदे लाय तैयार ना है अस अड़ो मुआदो कंदासी जेको असा लाय बेहतर हों अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो अमरीका ईरान के एटमी मिजाइल सलाहत खत्म कर छी है जैसे ईरान से हमलो न क्यों हा तो ईरान एटमी हथियार ठाए वे हा
3: वज़ीर आज़म पारां नाणे जे मटासटा वारा ज़खीरा 21 लाही 4 अरब डॉलर ताईं पहुचण ते सराई जो इज़हार शहबाज शरीफ चयो आहे त मुआशी टीम पारां सही रुख में खयल कदमनि ऐं महिनत सबबि नाणे ज़खीरनि में वाधि थी आहे एक्सपोर्ट में बहितरी ऐं माली ज़ब्त नाणे ज़खीरनि में वाधि लाइ अहम किरदार अदा कयो आलमी मार्केटनि ताईं पाकिस्तान जी ॿीहर रसाई आलमी एतमाद जी बहाली जो अक्स आहे नाणे जे ज़खीरनि में वाधि आलमी मुआशी मुश्किलातनि खे मुंहुं ॾियण लाइ असांजी सलाहियत वधाईंदी
4: कराची के व्यापारी मीर रजा केस की जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारा पुलिस ऑफिसर के तलब करण बदर लिखत में जवाब वठण जो फैसलो कमीशन गुजर वारे कार्रवाई जो लिखत में हुक्मनामो जारी कर एडिशनल आईजी आजाद खान ए डीआईजी उमर फारूक के लिखत में सवाल जा जवाब देने की हिदायत
3: कंदकोट में जस्टम पारा सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ रैली ए धरणो अगवाण सिंध असो तारीखी वतन है सिंध के खिलाफ कंखें भी साजिश कर डींदी कें भी सिंध के टोड़ की साजिश कई तो मुंह टोड़ जवाब डनो वो सिंध सिंधन की है हमेशा रही
4: मीरपुर साकरो वेझो पानी के वारे तिन धुर में जेड़ो पंजवी जणा जख्मी अस्पताल मुंतकिल वारे ऐं ॾाहोड़ा बिरादरीअ जे ॿिनि धुरनि में पाणीअ जे वारे तां जहिड़ो थियो लठियूं इसरोटा लॻण सबबि धुरनि जा 25 ॼणा ज़ख़्मी थिया ज़ख़्मियुनि खे इलाज लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो वियो
3: ऐं खैरपुर भरिसां मुख़्तलिफ़ थाणनि जी पुलिस जे गोट ते चढ़ाई औरतनि ऐं ॿारनि ते मुबैन तशदुद फुरलुट 5 ॼणा खंभे गुम करण जो इल्ज़ाम ॻोठाणनि मूजिब पुलिस गोठ वाहिद बख़्श रिंद ते चढ़ाई करे तशदुद जो निशानो बणायो पुलिस 5 ॼणनि खे खंभे वई आहे नोटिस वठी फुर कयल सामान वापस कराए नौजवान के आजाद करायो वञे
5: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में ते जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का
6: हम छम छम किताबे लेके निकले हम अमीन कहाना रुकना तुम रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम
7: जब स्कूल जाएंगे डॉक्टर बन जाएंगे सोचो अब्बा सबका नाम रोशन
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़

0: د هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزرې مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331-252-5786।
3: जी हा, 2311-25-25-786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो का बचाव जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वञे।
2: हुआ है फातिमा ईमान पर तेरा नूरी, जबी है खुल्द के हूरो कसूर आँखों में, ताजदार अहले सुन्नत शहजादा आला हजरत मजहरे गौसे आजम हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाही ताला अलैह का इश्क व इरफान से भरपूर और अजमत व मोहब्बत खुदा में सरशार कलाम समात फरमाए।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: मीरपुर साकरो वेझो पाणीअ जे वारे तां ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो। 25 ॼणा ज़ख़्मी अस्पताल मुंतकिल कया विया। वारे आहिनि डाउड़िया बिरादरी जे। ॿिनि धुरियुनि में पाणीअ जे वारे तां झेड़ो थियो। लठियूं ऐं सिरोटा लॻण सबबि धुरियुनि जा 25 ॼणा ज़ख़्मी थिया। ज़ख़्मियुनि खे इलाज लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो वियो।
1: लाड़काणे में जीए सिंध क़ौमी महाज ऐं जीए सिंध स्टूडेंट फेडरेशन जे सॾ ते डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जे मुबैना करप्शन ख़िलाफ़ रैली। अॻवाणनि चयो त डिप्टी डायरेक्टर खे 3 साल अॻु लाड़काणे रीजन जे कॉलेजेस में लेबार्टरीनि लाइ 13 करोड़ जारी कया विया, पर किथे बि सामान न आहे मिलियो। डिप्टी डायरेक्टर पैसा हड़प करे छॾिया आहिनि। जांच करे कार्रवाई कई वञे।
0: ऐं उडेरो लाल में वापारीअ खां 16 लख रुपियनि जी फुर ख़िलाफ़ एहतजाज। वापारियुनि रैली कढी थाणे अॻियां एहतजाज कयो आहे। अॻवाणनि चयो आहे त फुर जे वाकियनि सभु वापारी बिरादरी में गॾती पखेड़ियल आहे। पुलिस जवाबदारनि खे खुलियल छूट ॾेई छॾी आहे। फुर कयल सामान वापसि कराए बदमीअ ते ज़ाब्तो आंदो वञे।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहुं जी ख़ुसूसी नशरियात GA FM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: खुशखबरी चायो था अवां जे घरन जो छितू पकियो हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
1: जुमत उल मुबारक जे बाबरकत डी जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
4: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: It's 2 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: अस्पताल मंतकल कई वही आए.
4: Pakistan fully stands with the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi people. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters. There should be no doubt on that.
5: सऊदी अरब जी सलामती ते ठार नथो करे सके. सऊदी जी सलामती लाए पाकिस्तान हर हद पार करण लाए तैयार है. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अरब टीवी के इंटरव्यू डींदे है तो सऊदी अरब जी सिक्योरिटी लाए पाकिस्तान जो अजम गैर मशरूत है. कें भी जारान कदम खिलाफ सऊदी भाईरन से गड बीठल आय पाकिस्तान और बिन शरीफन की हिफाजत लाए उत मौजूद है. कें भी जहरियत खिलाफ सऊदी जो दिफा कदा रही.
3: यमन में सरकारी फौज ए हुसैन के तंजीम अंसारुल्लाह में झड़पू 63 जणा मारजी वया. केतरा ही जख्मी यमनी सरकारी फौज मूजिब अंसारुल्लाह के थाकन के निशानो बणायो वयो आए. जैजे नतीजे में हुसैन जो घणो जानी ए माली नुकसान थियो आए. केतरन ही हंधन ता बागी फरार थी वया आए.
5: ईरान जंग बाबत वो फैसलो करो आया. बीहर जंग शुरू करे ईरान के तबाह करो फैसलो भी थी सके थो. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो ईरान मुआदो कर चाहे थो पर इन वक्त मुआदे लाए तैयार ना है. अस अड़ो मुआदो कदी जो अस बेहतर हों. अमेरिका ईरान के एटमी मिजाइल सलाहित खत्म कर छी है.
3: सऊदी अरब ते हमला यूएई खुशहाली ए सलामती लाए खतरो आयन. बोरान जो खात्मे लाए गालन जो सिलसिलो शुरू कयो वने. यूएई सदारती सलाहकार अनवर प्रकाश चयो आए त ईरानी सदर सा वली अहद जी मुलाकात माजी के विसारे अगते वधण ते इत्तेफाक कए. मुस्तकबिल लाए पहिरियों कदम हमला रोकण घुर्जनि.

0: वज़ीर आज़म जे फ्यूल रिलीफ पैकेज लाइ 25,000 रुपया जारी। अहल वापेदारनि जी रक़म 48 कलाकनि अंदरि पेट्रोल पंप्स खे अदा कई वेंदी। पेट्रोल वारे वज़ारत मौजूद वज़ीर आज़म जे रिलीफ प्रोग्रामनि लाइ 3 महीननि जी रक़म रखी वई आहे। पहिरें महीने लाइ 25,000 रुपया असिस्ट बैंक खे स्टेट बैंक खे जारी कया विया आहिनि।
1: इस्लामाबाद में एहतजाज खां केर बि रोके नथो सघे। का बि ज़ाती एजेंडा नाहे। क़ौम साथ ॾिनो त हालतूं तब्दील थी वेंदियूं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो त लेवीअ जो भतो ऐं आईपीपी ख़त्म कई वञे, सस्ती मानी मिलणु घुर्जे।

0: कराची जे वापारी मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालत दे कमीशन पारां पुलिस आफिसरन के तलब करण बदरां लिखत में जवाब वठण जो फैसलो कमीशन गुजरियल ॾींहं वारे कार्रवाई जो लिखत में हुकुमनामो जारी करे छॾियो। एडिशनल आईजी आज़ाद ऐं डीआईजी उमर फारूकी खे लिखत में सवालनि जा जवाब ॾियण जी हिदायत।
1: सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं धरणा। कंदकोट में जीअ सिंध क़ौमी महाज़ पारां सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली कढी धरणो हयो वियो। टंडरो आदम में ख़ासि केली राजूणी इतिहाद पारां सिंध में मुंहिंजो साह जे उनवान हेठि रैली कढी वई। सिंध जो इम्कानी विरांगो रद्द सूबनि खे हक़ ॾियण जो फ़ैसिलो, जेका बाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी पारां बि सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरीन पारां सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं ख़तम करण जो मुतालबो।

0: आयो था अवां जे घरन जो छितू पकियो हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
1: जुमत उल मुबारक जे बाबरकत डी जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
2: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
0: तो पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक अड़ो एफएम रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125257 86।
0: जी हाँ 2315525786
2: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: जी
2: सिंध के माथे का झूमर
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
3: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे दींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी, घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो।

0: 3125257 86।
1: जी हाँ, बुड़ी 3125257 86।
0: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जडे भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उडाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंज दा कदमुनो द्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी दो सास की वरकवल महेरवई। जका चो हम दगा सास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोजानो सुबह जो 10 to 10:30 ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
3: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 rupees खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 years गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252578 6।
0: जी हाँ, बुड़ी 331 5 5 786।
1: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाए।

0: शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज GFM 90.4
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125257 86
2: जी हाँ 2315 5786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: कुहाट में दहशत गर्दन जो पुलिस लाइन भरसां मस्जिद ते आपघाती हमलो पंज पुलिस अहलकारनि समेत 16 शहरी शहीद टीहनि खां वधीक जख़्मी पुलिस जी जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारिजी विया आईजी केपी चयो आहे त दहशतगर्दनि जा हमला हौसला घटाए नथा सघनि सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ घरू वज़ीर मोहसिन नकवी केपीअ जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी ऐं ॿियनि पारां दहशतगर्द हमले जी मज़ामत ज़ख़्मनि खे तिबी सहूलियतूं ॾियण जी हिदायत
1: Pakistan fully stands with the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi people. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters. There should be no doubt on that.
0: सऊदी अरब जे सलामतीअ ते ठाह नथो करे सघिजे सऊदीअ जी सलामतीअ लाइ पाकिस्तान हर हद पार करण लाइ तयारु आहे डीजी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अरब टीवीअ खे इंटरव्यू ॾींदे चयो आहे त सऊदी अरब जी सिक्योरिटीअ लाइ पाकिस्तान जो अज़म गैर मशरूत आहे कंहिं बेजाराणनि कदमनि ख़िलाफ़ सऊदी भाइरनि सां गॾु बीठल आहियूं पाकिस्तान हरमैन शरीफ़ जे हिफ़ाज़त लाइ उते मौजूद आहे कंहिं बेजारियत ख़िलाफ़ सऊदी दिफ़ा कंदा रहंदासीं यमन में सरकारी फ़ौज ऐं हुसैन जे तंज़ीम अंसार लाइ में झड़पूं 63 ॼणा मारिजी विया केतिरा ई ज़ख़्मी यमनी सरकार फ़ौज मूजिबि अंसार लाइ जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो जंहिंजे नतीजे में हुसैन जो घणो जानी ऐं माली नुक़सान थियो आहे केतिरनि ई हंधनि तां बागी फरार थी विया आहिनि ईरान जंग बाबति वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां ॿीहर जंग शुरू करे ईरान खे तबाह करण वारो फ़ैसिलो बि थी सघे थो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान मुआदो करणु चाहे थो पर हिन वक़्तु मुआदे लाइ तयारु न आहे असां अहिड़ो मुआदो कंदासीं जेको असां लाइ बहितर हूंदो अमरीका ईरान जे एटमी मिज़ाइल सलाहियत ख़तम करे चुकी आहे सऊदी अरब ते हमला यूएई जे खुशहाली ऐं सलामतीअ लाइ ख़तरो आहिनि बोहरान जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू कयो वञे यूएई जे सदारती सलाहकार अनवर चयो आहे त ईरानी सदर सां वली अहद जी मुलाक़ात में माज़ीअ खे विसारे अॻिते वधण ते इतफ़ाक़ थियो आहे मुस्तक़बिल लाइ पहिरियों क़दम हमला रोकणो हुजणु घुर्जनि खैबर पख़्तूनख़्वा में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा 10 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया बारूदी सुरंग जे धमाके में पाक फ़ौज जा 6 जवान बि शहीद आई एस पी आर मूजिबि उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन दौरान 6 ख़ारजी मारिजी विया हंगू में बि चकरियुनि दौरान 4 दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो कार्रवाइयुनि दौरान 6 जवान बि शहीद थिया सदर आसिफ ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयुनि ते फोर्सिस खे भेटा पेश शहीद जवान क़ौम जा हीरो करार वज़ीर आज़म जी फ्यूल रिलीफ पैकेज लाइ 25 अरब रुपया जारी अहल वापिंदड़नि जे रक़म 48 कलाक अंदरि पेट्रोल पंप्स खे अदा कई वेंदी पेट्रोलियम वारे वज़ारत मूजिबि वज़ीर आज़म जे रिलीफ प्रोग्राम लाइ 3 महीननि जी रक़म रखी वई आहे पहिरें महीने लाइ 25 अरब रुपया स्टेट बैंक खे जारी कया विया आहिनि

0: कोट में जसकम पारा सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ रैली कड़ी धरनो आयो वयो। टंडरो आदम में खास केली राजू इतिहाद पारा सिंध में मुझो साज उनवान सा रैली कड़ी वही सिंध जो इम्कानी विरांगो रद्द। सूबे के हक डण जो मुतालबो जेकम बाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी पारा भी सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ एहतजाज कयो वयो। मुजाहिरीन पारा सिंध खिलाफ साजिशों खत्म करण जो मुतालबो। फैज़गंज में पसंद के परणे तां गोठ ते हथियारबंदन की का गोठ जुमो राजपुर में हथियारबंदन।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
5: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
6: केश ए किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जू पक्यू छिटू लगरा लाए खुश खबरी। छा चाहो था अवां जे घरन जू छिटू पक्यू हुजन त केश ए किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छिटू लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ए सस्ते में सस्ती छित लगराण लाए राबतो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारी की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
7: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
9: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक मुसलसल
6: गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
9: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 0331252578 6
6: जी हाँ 3135525786
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30 to 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो,
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03132525786।
1: जी हा, 3135525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: सिंध के माथे का झूमर
0: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो नवी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानुता द पोलियो द मखनिवी दो सास की वरकवल महेरवई। जका चुहम द गसास की द माशुमानु द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी और द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
7: मातली आसपास की अवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासी। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियो या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
8: केश ए किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जू पक्यू छितू लगरा लाए खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जू छितू पक्यू हुजन त केश ए किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छितू लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ए सस्ते में सस्ती छित लगराण लाए राबतो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
9: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
10: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
9: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
10: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
9: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
10: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
11: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सोलह शहरी शहीद, 70 का वधीक जख्मी। पुलिस जी जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द भी मारा व्या। आईजी खैबर पख्तूनख्वा चयो आहे त दहशतगर्दनि जा हमला हौसला घटाए नथा सघनि। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म घरू वज़ीर मोहसिन नकवी, केपी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी ऐं ॿियनि पारां दहशतगर्द हमले जी मज़म्मत। ज़ख़्मियुनि खे तिबी सहूलियतूं ॾियण जी हिदायत।
4: Police stands with the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi people. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters.
3: सऊदी अरब जी सलामतीअ ते ठाह नथो करे सघिजे। सऊदीअ जी सलामती लाइ पाकिस्तान हर हद पार करण लाइ तयार आहे। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अरब टीवीअ खे इंटरव्यू ॾींदे चयो त सऊदी अरब जी सिक्योरिटीअ लाइ पाकिस्तान जो अज़म गैर मशरूत आहे। कंहिं बि जारहाणनि कदमनि ख़िलाफ़ सऊदी भाइरनि सां गॾु बीठल आहियूं। पाकिस्तान हरमैन शरीफ़ जी हिफ़ाज़त लाइ उते मौजूद आहे। कंहिं बि जारियत ख़िलाफ़ सऊदीअ जो दिफ़ा कंदा रहंदासीं। यमन में सरकारी फ़ौज ऐं हुसन जी तंज़ीम अंसारुल्लाह में झड़पूं, 63 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी। यमनी सरकारी फ़ौज मूजिबि अंसारुल्लाह जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो, जंहिं जे नतीजे में हुसन जो घणो जानी ऐं माली नुक़सान थियो आहे। केतिरनि ई हंधनि तां बाग़ी फरार थी विया आहिनि। ईरान जंग बाबति वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां। ॿीहर जंग शुरू करे ईरान खे तबाह करण वारो फ़ैसिलो बि थी सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान मुआदो करण चाहे थो, पर हिन वक़्तु मुआदे लाइ तयारु न आहे। असां अहिड़ो मुआदो कंदासीं जेको असां लाइ बहितर हूंदो। अमरीका ईरान जी एटमी मिज़ाइल सलाहियत ख़तम करे छॾी आहे। सऊदी अरब ते हमला यूए जी खुशहाली ऐं सलामतीअ लाइ ख़तरो आहिनि। बहरान जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू कयो वञे। यूए जी सदारती सलाहकार अनवार करगाश चयो आहे त ईरानी सदर सां वली अहद जी मुलाक़ात में माज़ीअ खे विसारे अॻिते वधण ते इतफ़ाक़ थियो। मुस्तक़बिल लाइ पहिरियों क़दम हमला रोकणु हुजणु घुर्जे। خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز جو آپریشن ہندوستانی فتنے جا 10 خارجی دہشت گرد مارجی ویا۔ بارودی سرنگ جی دھماکے میں پاک فوج جا 6 جوان بھی شہید۔ آئی ایس پی آر موجب اتر وزیرستان میں آپریشن دوران 6 خارجی دہشت گردن کے مارے ویو۔ ہنگوم بے چکرن دوران 4 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیو ویو۔ کاروائن دوران 6 جوان بھی شہید تھی ویا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم پاراں دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائی تے فورسز کے بھیٹا پیش۔ شہید جوان قوم جا ہیرو قرار۔ वज़ीर आज़म जी फ्यूल रिलीफ पैकेज लाइ 25 अरब रुपया जारी। अहल वाहिपेदारनि जी रक़म 48 कलाकनि अंदरि पेट्रोल पंप खे अदा कई वेंदी। पेट्रोलियम वारी वज़ारत मूजिबि वज़ीर आज़म जे रिलीफ प्रोग्राम लाइ 3 महीननि जी रक़म रखी वई आहे। पहिरें महीने लाइ 25 अरब रुपया स्टेट बैंक खे जारी कया विया आहिनि। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर शाहनवाज कुंभर कतल केस में मकामी अदालत खे कार्रवाई खां रोके छॾियो। सिंध हाईकोर्ट जी केसनि खे सेशन कोर्ट मुंतकिल करण जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ अपील ते ॿुधणी थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जी सरबराहीअ में ॿ रुकनी बेंच ॿुधणी कई। वकीलनि जा दलील ॿुधण बाद सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट खे वधीक कार्रवाईअ खां रोके छॾियो। अदालत धुरनि खे नोटिस जारी कंदे ॿुधणी 13 अक्टूबर ताईं मुलतवी करे छॾी। कराचीअ में पीटीआई जो तेल अघनि में वाद ऐं सिंध में करप्शन ख़िलाफ़ सिंध असेंबलीअ अॼु गॾह गार्डन ते एहतजाज। पीटीआई एमपीएस जो करप्शन कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। सिंध हुकूमत जे तर्जमान सादिया जावेद चयो आहे त पीटीआई वारा इल्ज़ाम लॻाइण खां पहिरीं गोगीअ जी करप्शन जो हिसाब ॾियनि। सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं धरणा। कनकोट में जसकम पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ रैली कढी धरणो हयो वियो। टंडो आदम में ख़ासि केली राजूनी इतिहाद पारां सिंध में मुंहिंजो साह जे उनवान सां रैली कढी वई। सिंध जो इम्कानी विरहाङो रद्द, सूबे खे हक़ ॾियण जो मुतालबो। जेकबाबाद में SUP पारां बि सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो, ख़तम करण जो मुतालबो। कंदकोट में क़ौमी अवामवाजी तंज़ीम हैंड्स ख़िलाफ़ एहतजाज, DC ऑफिस आॾो धरणो। मुज़ाहिरीन जो हैंड्स ते घरनि जी तामीर लाइ मिलंदड़ पैसनि में करप्शन जो इल्ज़ाम। मुज़ाहिरीन चयो त हैंड्स सिंध पीपुल्स हाउसिंग स्कीम में करप्शन करे रही आहे। घरनि जी किस्तनि ते मुतासिरनि खां पैसा वरिता पिया वञनि, इंसाफ़ कयो वञे। अमनपुर वेझो शागिर्द खणी वेंदड़ कार्गो रक्षा लालण वाह में किरी पियो। भरपासे में मौजूद माण्हुनि शागिर्दनि खे ॿुॾण खां बचाए वरितो। कार्गो रक्षा स्कूल जी मोकल थियण बाद शागिर्दनि खे घरनि ॾांहुं खणी वञी रहियो हो त ओचितो वाह में किरी पियो। टे शागिर्द वाह में ॿुॾी विया, जिन खे पाणीअ मां कढी बचायो वियो। मेहड़ में साफ़ पाणीअ जी फरहमी न थियण, गंदगीअ जी आज़ार, रोड रस्ता तामीर न थियण ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ जमातनि जो एहतजाज। GDA, PTI, क़ौमी अवामी तहरीक ऐं ॿियनि पार्टियुनि जे कारकुननि द्वार चौक खां घंटा घर चौक ताईं प्यादल मार्च कयो। अॻवाननि जो चवण हो त शहर जा बुनियादी मसला हल कया वञनि, ॿी सूरत में एहतजाज जारी रखियो वेंदो।

0: तखर वेझो नारीअ खे कारण इल्ज़ाम हेठि क़तल करण जो इंकिशाफ केस दाख़िल। तमाचाणी थाणे ते सरकार जी फरियाद ते नारी सादिया महर जो केस दाख़िल कयो वियो। केस में नारी जे वालिद क़ुर्बान महर, ॾाॾे गुलबहार महर ऐं ज़ाहिद उर्फ राजा महर खे नामज़द कयो वियो। पुलिस मूजिबि गुज़िरियल ॾींहुं ॻोठु गोसड़ जीअ में नारी सादिया महर खे गोली हणी क़तल कयो वियो हो। नारीअ खे संदसि वालिद पंहिंजे पीउ ऐं भाउ सां गॾिजी कारण इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो। ऐं कंडियारो वेझो ॻोठाणनि जो ज़मीन ते कब्ज़े ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ सालेह राजपर जे रहवासियुनि ज़मीन ते मुबैना कब्ज़े जी कोशिश ऐं बासरनि जे नाइंसाफ़ियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। ॻोठाणनि जो चवणो हो त ओढाणा बिरादरी जा माण्हू ज़बरदस्ती ज़मीन ते कब्ज़ो करण चाहिनि था। नोटिस वठी बासरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराय तो जवाबित लागू हैं।
5: धर्माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयानवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई اخپل ماشومانو تا د پولیو د مخنیوی دو ساسکی ورکول مهیروی زکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله مازوری
6: ماتلی آس پاس جی عوام لای خوشخبری मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321 2230।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
10: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
7: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
10: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
7: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
10: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
10: 0331252578 6।
7: जी हां 2315525786
10: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: केश किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जू पक्यू छिटू लगरा लाए खुश खबरी।

0: छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अमर सिंध जे एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
4: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहा आयो?
0: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03132525786।
0: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: आप सुन रहे हैं
3: DAFM
2: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जा बकतरा जरूर प्यारियो. छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था. पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी.
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है. इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ. बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शराइत जवाबित लागू हैं.
5: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यौनवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानुता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल माहिरवई जकच हम द गसास की द माशुमानु द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजर मुमी. पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी.
6: मातली आसपास की अवाम लाए खुशखबरी. मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी. मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी. जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा बेडी घुराए पूरी करे ॾींदासीं. घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी. राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो. टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं. नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा. एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली. राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 031308631633.

0: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक का सही।

0: आर्यन हीअ में सूत जो घटि थियण कमज़ोरी तो नहीं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-200।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: घरू वजीर मोहसिन नकवी चयो आहे त एहतजाज जे नाले ते इस्लामाबाद मथां हमले जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। सोशल मीडिया ते ॻाल्हि थी रही आहे त मखसूस कबीलनि जा माण्हू अची रहिया आहिनि। माण्हू या चंदो जमा करण बदिरां दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ जंग ते ध्यानु हुजणु घुर्जे। कंहिंखे एहतजाज करणो आहे त पंहिंजनि इलाइक़नि या शहरनि में कनि। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नकवी जो चवणो हो त इस्लामाबाद हाईकोर्ट जे फैसले खां पोइ कंहिं बि सूरत में मुल्क जे गादी वारे शहर ते काह नथी करे सघिजे। कंहिं अदालती फैसले जी भञकड़ी कई त तो हिन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल कई वेंदी। जवाननि खे ॿुधाए छॾियो आहे त ईअं न थींदो त गोलियूं हलनि ऐं तव्हां ख़ामोश थी वेही रहो। कुहाट में दहशतगर्दीअ जो अफ़सोसनाक वाकियो पेश आयो आहे। तव्हांखे नथो सूहे त हिक तरफ़ शहीदनि जा जनाज़ा खजनि ऐं ॿिए पासे धरणनि जी तयारी कयो। खैबर पख्तूनख्वा जे शहर कुहाट में दहशतगर्दनि जो पुलिस लाइन्स जी मस्जिद ते अपघाती हमिलो ऐं फायरिंग। 5 पुलिस अहलकारनि समेत 16 शहरी शहीद, 57 ज़ख़्मी। पुलिस जी जवाबी कार्रवाईअ में 6 दहशतगर्द मारिजी विया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा चयो आहे त दहशतगर्दनि जा हमला हौसला घटाए नथा सघनि। सदर आसिफ़ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नकवी, खैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी ऐं ॿियनि पारां दहशतगर्द हमले जी मज़म्मत, ज़ख़्मियुनि खे तिबी सहूलियतूं ॾियण जी हिदायत।
1: Fully stands with the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi people. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters.
0: सऊदी अरब जी सलामतीअ ते ठाह नथो करे सघिजे। सऊदीअ जी सलामतीअ लाइ पाकिस्तान हर हद पार करण लाइ तयारु आहे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी अरब टीवीअ खे इंटरव्यू ॾींदे चयो त सऊदी अरब जी सिक्योरिटीअ लाइ पाकिस्तान जो अज़म गैर मशरूत आहे। कंहिं बि जारहाणनि कदमनि ख़िलाफ़ सऊदी भाइरनि सां गॾु बीठल आहियूं। पाकिस्तान हरमैन शरीफ़ जी हिफ़ाज़त लाइ उते मौजूदु आहे। कंहिं बि जारियत ख़िलाफ़ सऊदीअ जो दिफ़ा कंदा रहंदासीं। यमन में सरकारी फ़ौज ऐं हुसैन जी तंज़ीम अंसारुल्लाह में झड़पूं, 63 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी। यमनी सरकारी फ़ौज मूजिबि अंसारुल्लाह जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो, जंहिं जे नतीजे में हुसैन जो घणो जानी ऐं माली नुक़सान थियो आहे। केतिरनि ई हंधनि तां बाग़ी फ़रार थी विया आहिनि। ईरान जंग बाबति वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां। ॿीहर जंग शुरू करे ईरान खे तबाह करण वारो फ़ैसिलो बि थी सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान मुआदो करण चाहे थो, पर हिन वक़्त मुआदे लाइ तयार न आहे। असां अहिड़ो मुआदो कंदासीं जेको असां लाइ बहितर हूंदो। अमरीका ईरान जी एटमी मिज़ाइल सलाहियत ख़तम करे छॾी आहे। सऊदी अरब ते हमला UAE जी खुशहाली ऐं सलामतीअ लाइ ख़तरो आहिनि। बोहरान जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू कयो वञे। UAE जी सदारती सलाहकार अनवर करगाश चयो आहे त ईरानी सदर सां वली अहद जी मुलाक़ात में माज़ीअ खे विसारे अॻिते वधण ते तफ़ाक़ थियो। मुस्तक़बिल लाइ पहिरियों क़दम हमला रोकणु हुजणु घुर्जे। खैबर पख़्तूनख़्वा में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन, हिंदुस्तानी फितने जा 10 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। बारूदी सुरंग जे धमाके में पाक फ़ौज जा 6 जवान बि शहीद। ISPR मूजिबि उत्तर वज़ीस्तान में ऑपरेशन दौरान 6 ख़ारजी दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। हंगो में बि चकरियुनि दौरान 4 दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। कार्रवाइयुनि दौरान 6 जवान शहीद थिया। सदर ऐं वज़ीर आज़म पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस खे भेटा पेश। वज़ीर आज़म जे फ्यूल रिलीफ पैकेज लाइ 25 अरब रुपया जारी। अहल वाफ़ेदारनि जी रक़म 48 कलाकनि अंदरि पेट्रोल पंप खे अदा कई वेंदी। पेट्रोलियम वारी वज़ारत मूजिबि वज़ीर आज़म जे रिलीफ प्रोग्राम लाइ 3 महीननि जी रक़म रखी वई आहे। पहिरें महीने लाइ 25 अरब रुपया स्टेट बैंक खे जारी कया विया आहिनि। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर शाहनवाज़ कुंभर क़त्ल केस में मक़ामी अदालत खे कार्रवाईअ खां रोके छॾियो। सिंध हाईकोर्ट जे केस खे सेशन कोर्ट मुंतकिल करण जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ अपील ते ॿुधणी थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जी सरबराही में बरुखनी बेंच बुधनी कई। वकीलन जा दलील बुधन बाद सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट के वधिक कार्रवाई का रोके छोड़ो। अदालत धुरन के नोटिस जारी कंदे बुधनी 13 अक्टूबर ते मुलतवी कर छी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GAFM 90.4।
10: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
6: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
10: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 03132525786।
6: जी हा, 2315525786।
10: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: इहो ॿुधायो त तव्हांजी ज़िंदगानी कीअं थी हले? माशाल्लाह माशाल्लाह, तव्हांजी ज़िंदगानी त तव्हांजी ज़िंदगानी त ठीकु थी हले, पर तव्हांजी जेका फोन लाइन आहे उहा सही नथी हले, तव्हांजा सिग्नल सही नथा
1: अचनि।
0: हा एग्ज़ेक्टली, छो त तव्हांजी आवाज़ सफ़ा कॾहिं मथे थी वञे, कॾहिं सफ़ा हेठि थी वञे।
1: हलो हलो,
0: जी जी इमामदीन भाई, हाणे त अचे थी।
1: हा मुंहिंजो नेटवर्क तमामु इशू आहे, ऐं तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधा
0: वाह वाह वाह वाह। इमामदीन साहब, तव्हां त वरी तारीफ़ करे छॾी आहे, थैंक यू सो मच। तव्हां पाण प्यार आयो, इन लाइ तव्हांखे प्रोग्राम बि प्यारो लॻंदो आहे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अगरि इहो गानो थोरो वधीक वॾो थी वञे हा त मां चांहि बि पी छॾियां, छो त मां तव्हांजे हिन गाने में बिस्किट खाए छॾियां, मूंखे चांहि मिली वियो। वालेकुम असलाम इमामदीन साहब, तव्हांजी सुरीली आवाज़ असां ॿुधीसीं, तमामु घणी तव्हांजी प्यारी आवाज़ हुई, तव्हांजा सलाम बि पहुची विया आहिनि, थैंक यू सो मच। पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो, अदाब, थैंक यू। हमारे साथ है जनाब इमामदीन भमरो साहब, और इनके गाने के वजह से मैंने बिस्किट खा लिया अपना, और चाय मेरे पास पड़ी है, मैं चुस्कियां ले लेकर पीऊंगा, आप भी चाय पीजिए, क्योंकि शाम का टाइम है, दोस्तों के साथ अगर आप चाय नहीं पियेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम।
0: केरा सा सबनी सा गडो?
2: जी मेरा पुरखा तुफैल शेर।
0: मेरा पुरखा तुफैल
2: शेर।
0: तुफैल शेर,
2: खुर्शेद।
0: खुर्शेद, ओके। खुर्शेद भाई, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक आयो?
2: दुआओं अल्हम्दुलिल्लाह,
0: फर्स्ट क्लास। तो यू बुधायो, आज भला इतना सीरियस छो आयो?
2: जी
0: आज भला इतना सीरियस छो आयो?
2: मैं सीरियस ना
0: आयो ना। सीरियस ना आयो, सही सही मजे में ना, ये गलायो ना, जोश में अची करे खबर पे था खुर्शेद भाई आसान सभी सागर।
2: जी जी जी
0: आई मेहरापुर वाला सब कड़े हालन में आयो?
2: शुक्र
0: ख़ुदा। हा असांजो प्रोग्राम जेको आहे मेहरापुर वारा सही हलाईंदा आहिनि, टाइम ते हलाईंदा आहिनि। हा उहे चवंदा आहिनि महबूब त मालिक आहिनि, को हिसाब हुननि सां कोन्हे। मेहरापुर वारा मुंहिंजो प्रोग्राम ॿ कलाक पूरो हलाईंदा कयो था। बसि हाणे मां हिननि ते ॾंढ विझंदुमि। हा खुर्शीद भाई, ॿुधायो छा कंदा आहियो?
2: सर तव्हांखे ॿुधायो, पहिरां मां कारीगर आहियां।
0: अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तव्हांजो कमु कार सही थो हले?
2: शुक्र ख़ुदा अलहमदुल्ला।
0: ऐं चांहि बांहि पीती अथव दोस्तनि सां गॾु घर में वेही करे या न अञा ताईं? सेम टू यू, मां सुबुह जो पीअंदो आहियां सिर्फ़, अगरि एफ एम अचां या किथे वञा त पोइ पीअंदो आहियां, न त मां सिर्फ़ सुबुह जो पीअंदो आहियां बसि। खुर्शेद भाई, इहो ॿुधायो, गानो थो हलायां ज़बरदस्त, पिपला थी छांव वे, हिकिड़े अदे जी फरमाइश आई हुई त कंहिंजे लाइ करणु चाहियो?
2: सर सभ खां पहिरियां तव्हांजे पूरी टीम खे मुंहिंजे पारां सलाम हुजे।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: टाइम लॻेव त पोइ आमद मोबाइल जो गानो ॿुधायो।
0: कहिड़ो कहिड़ो?
2: सभु दर दर थी दिल में बसि जीअणो पवंदो आहे।
0: वाह वाह वाह, हिकु मिंट मां सर्च करे छॾियां त पोइ तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदुमि। सभु
2: सभु दर दर थी दिल में
0: वाह वाह वाह वाह, बिल्कुलु अची वियो आहे तव्हांखे, मां बिल्कुलु इहो गानो ॿुधाईंदुमि। अदा थैंक यू सो मच, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो गानो?
2: सर सैयद मुफ़द हुसैन शाह, सैयद अब्बास अली शाह।
0: जी हा,
2: सैयद आलम शाह तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधंदो आहे?
0: जी जी।
2: ऐं साईं अमीर हुसैन
0: जी,
2: जेके बि दोस्त ॿुधी रहिया आहिनि सभु जल्दी करे।
0: थैंक यू सो मच, त पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो।
2: थैंक यू,
0: थैंक यू। हमारे साथ बहुत प्यारे से भाई और भाई को सुनवाते हैं अब एक जबरदस्त गाना जो काफी देर से पेंडिंग पे है, पिपला दी छांव होवे। इस गाने को सुनिएगा, हमारे साथ रहिएगा और हंसते मुस्कुराते हुए शाम के 7 बजे तक मेरे साथ रहिए, मेरा साथ निभाइए।

0: जी जनाब वेलकम बैक. बहुत प्यारा सा गाना आपके समातों की नजर किया हमने और आपने यकीन इस गाने को बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया होगा. तो आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम अब बात करते हैं किसकी. अब हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तान में तेजी से जो है खत्म होने वाली और बहुत जगहों पे सर उठाने वाली बुरी जो है बीमारी पोलियो की. बिल्कुल जनाब पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है 21-27 सितंबर जिसको खत्म करने के लिए हमारी पूरी टीमें जो है तनदही के साथ काम कर रही है और पाकिस्तान के हर इलाके में गली कोनों में अपनी जांफिशानी से काम करते हुए घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रही हैं ताकि इस जो मूजी बीमारी से तमाम बच्चों को निजात मिल सके. पाकिस्तान ने पोलियो के खात्मे की जानिब पाकिस्तान ने पोलियो के खात्मे की जानिब नुमाया पेशरफ्त की है और 1994 में कौमी प्रोग्राम के आगाज के बाद मुल्क में रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेज में 99.8% कमी आई है. तो जनाब 2026 में अब तक पोलियो के 4 केसेस सामने आए हैं जिनमें 3 खैबर पख्तूनख्वा और 1 सिंध से हैं. ये सूरत हाल पोलियो वैक्सीनेशन और निगरानी का अमल मुसलसल जारी रखने की जरूरत को वाजह करती है. 21 से 27 सितंबर तक जारी रहने वाली डेली कौमी पोलियो मुहिम में 115 मुंतखब हाई रिस्क जो है अजला के तकरीबन 3,10,00,000 पांच साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जो हैं वो पिलाए जाएंगे. ये मुहिम अफगानिस्तान के साथ हम आहंगी में मुनक्किद की जा रही है ताकि सरहद पार पोलियो वायरस की मुंतकली के खतरे को कम करने के लिए मुश्तरका कोशिशों को मजीद मुअसर बनाया जा सके. ये मुहिम अफगानिस्तान के साथ हमांगी के लिए जो है वो की जा रही है और 2026 में अब तक 2 कौमी और 1 जेली कौमी पोलियो मुहिम मुनक्किद की जा चुकी है. सितंबर की मुहिम का मकसद बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त को मजीद मजबूत बनाना, उन्हें इजाफी तहफ़ फराहम करना और वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों तक दोबारा रसाई हासिल करना है. सितंबर की पोलियो मुहिम के दौरान 2,73,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे. खासतौर पर वैक्सीन से महरूम रह जाने वाली जो डोज है दूर दराज इलाकों में रहने वाले और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने वाले बच्चों तक रसाई पर तवज्जो दी जाएगी और खुसूसी तवज्जो दी जाएगी. 5 साल से कम उम्र बच्चे को हर बच्चे को पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाए जाएंगे. इससे पहले भी पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके होंगे जिनको पोलियो वैक्सीन की हर इजाफी खुराक बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त को मजीद मजबूत करती है और इसे पोलियो से बेहतर तहफ़ फराहम करती है. माहौलियाती निगरानी के नतायज में बेहतरी आई है और जनवरी से अगस्त 2025 के दौरान 469 मस्बत माहौलियाती जो है नमूने सामने आए हैं जबकि इसी अरसे में 2026 में ये तादाद कम होकर 129 रह गई है जो 72.5% कमी को जाहिर कर दी है जो कि बहुत अच्छी बात है कि जनाब हमारी टीमें इतनी तंदही से और इतनी जांपचानी से काम कर रही हैं कि जनाब अब वो उसका जो रेशियो है बीमारी का वो बहुत कम और जो उसका कहीं पर जाहिर हो रही तो वो बहुत कम नमूने देखने में आ रहे हैं. पोलियो वायरस की मौजूदगी वाले अजला की तादाद में भी कमी आई है. 2026 में अब तक 35 अजला से मस्बत माहौलियाती नमूने सामने आए हैं जबकि 2025 में यह तादाद 82 अजला थी. पोलियो वायरस की मौजूदगी में कमी एक हौसला अफजा पेशरफ्त है ताहम वायरस के मुकम्मल खात्मे तक किसी भी सतह पर गफलत की गुंजाइश नहीं है. इस मकसद के मुसलसल वैक्सीनेशन, मजबूत निगरानी और बरवक्त इकदाम का तसलसल बरकरार रखना जरूरी है. आवाम का तआवुन पोलियो के खात्मे के लिए निहायत अहम है. दोस्तों वालदेन और बच्चों की देखभाल करने और आने वाले अफराद वैक्सीनेशन टीमों से तआवुन करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को हर मुहिम के दौरान पोलियो से बचाव के 2 कतरे जरूर पिलाए जाएंगे. तो कोशिश करें कि इस मूजी मर्ज से अपने बच्चों की जान छुड़वाएं, उनका मुस्तकबिल महफूज बनाएं क्योंकि जनाब ये बहुत मूजी मर्ज है जिससे हमारे नई नस्ल को बचना है, हमारे आने वाली नस्लों को बचना है और जनाब ताकि हमारी नई नस्ल आने वाली नस्ल जो है वो भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाए. तो जनाब इस वक्त टाइम हुआ चाहता है एक अदद ब्रेक का. हम चलते हैं एक अदद ब्रेक की जानिब. आप हमारे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए हमारे शो को जिसका नाम है आई लव यू ऑल.
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
2: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहाँ ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 मुमालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अमर अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक

0: गांव के साथ। ये बताइए क्या हो रहा है आजकल यारा?
1: बस आजकल हम काम ही कर रहे हैं, बस क्या करें, थोड़ी सी गर्मी है, गर्मी अभी ज्यादा हो गई है।
0: हाँ, गर्मी ज्यादा हो गई, अपना असर दिखा रही है, झगड़ा कर रही है सबके साथ,
1: असर दिखा रही है जी बिल्कुल। और इसी गर्मी के साथ जो है ना हमारे फसल है, वो भी फसल भी जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो जो है जल्दी पक के तैयार हो जाएगा।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब वो कहते हैं ना अल्लाह ताला के काम में कोई ना कोई बेहतरी जरूर होती है, तो इसीलिए इस गर्मी के पड़ने के पीछे भी बहुत सारी खैर है ना।
1: जी जी बिल्कुल, इसी गर्मी के साथ साथ बहुत सारे फायदे हैं बिल्कुल
0: बिल्कुल, हमारे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सोना भाई, आज मैं आपको गाना सुनाऊंगा, तेरा मेरा है प्यार अमर। आज आप अपने गाने की कोई फरमाइश ना कीजिएगा।
1: मैं फरमाइश क्योंकि आज मेरी कार लास्ट लिंक में मिली है, मैं कोई भी फरमाइश नहीं कर सकता। अगले वीक मैं आपके साथ सर बिल्कुल बात करूंगा, आपको फरमाइश भी कर लूंगा।
0: क्योंकि एक भाई की फरमाइश है, कोई उन्होंने 5-7 मैसेज किए तो मैंने कहा ये गाना उनके लिए प्ले कर देते हैं ना, तेरा मेरा है।
1: सर यही गाना प्ले करो और उस भाई को भी हम यही डेडिकेट कर लेंगे, क्योंकि एक दूसरे की हम जो है ना शिकायत नहीं कर सकते।
0: अच्छा ये बताओ सोना भाई, अगर आपको लाइफ में किसी को थैंक यू कहने का मौका मिले, किसी को आई लव यू कहने का मौका मिले, जो कि आपने आज तक नहीं किया और सोच रहे हैं कि वो बंदा मुझसे मिलेगा, या फिर आप झिझक रहे हैं उससे कुछ कहने के लिए, तो आज आप वो कह दें।
1: सर बिल्कुल, वो सबसे पहले आप हैं सर।
0: हाय हाय, थैंक यू सो मच। हम उसे क्या कहना चाहेंगे?
1: जी सर बिल्कुल,
0: हम उसे क्या कहना चाहेंगे जरा बताइए ना
1: आपको। सर आई लव यू कहना चाहेंगे बिल्कुल।
0: थैंक यू सो मच, आई लव यू टू यारा।
1: क्योंकि सर आपसे ज्यादा कोई भी हमारा दोस्त नहीं है सर।
0: हाँ थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। आप इतनी प्यार देते, इतनी इज्जत देते, तो जाहिर सी बात है हमें भी हमारा दिल खुश हो जाता है।
1: जी सर बिल्कुल, और जो दोस्तों का नाम है वो हम आपको
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ सबसे पहले आप और पूरी टीम को, उसके बाद जो है जवाहर मोहम्मद बच्चन चंबानी और शिकारपुर से जमाल दिन भयोरा सलाम, और शफी मोहम्मद चांडिया उसको कोठरा सलाम, और उसके बाद मुबारकपुर से अब्दुल भुट्टा, अयाज अली भुट्टा, सलेमान भुट्टा, जो भी मेरे भाई और बहने आपका शो सुन रहे हैं, सबसे सोना खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम या अली मदद।
0: वालेकुम अस्सलाम वाला अली मदद। थैंक यू सोना भाई, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ है सोना खान मस्तोई भाई, और जनाब सोना खान मस्तोई भाई के बाद आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर, और हमारे साथ अपने प्रोग्राम में डेडिकेशन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और जनाब जबरदस्त तरीके से प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम अशरफ भाई।
0: हाँ जी, के रहा सबनी संगत मैसेज भी पहुतो है, कॉल भी लगी हुई सो
2: बिल्कुल।
0: वो कहते हैं ना कि दिल अगर सच्चा हो तो मंजिलें मिल ही जाती हैं, रास्ते मिल ही जाते हैं।
2: बिल्कुल।
0: हाँ तो अली गुल कटबार साहब, कड़ा हाल चाल है ताजा, ठीक ठाक है? हो
2: अलहमदुल्ला,
0: मां सदके पांजे भारत अली गुल भा
2: बस ये सही पंहिंजे राखी पोइ निकिरंदा आहियूं 50 रुपए जो कमु।
0: माशाला माशाला, कीअं हले थो तव्हांजो कमकार?
2: अलहमदुल्ला तमामु सुठो साईं।
0: अली गुल कटबार साहब, तव्हां कॾहिं पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि रखी आहे दिलि में? अगरि कोई तव्हांखे मिले त तव्हां हुनखे थैंक यू चयो या शुक्रिया चयो, कहिड़ो माण्हू अहिड़ो आहे जेके तव्हां आई लव यू चयो या शुक्रिया चयो?
2: सची ॿुधायां त साईं, जेके रेडे जा मुंहिंजा दोस्त जेके बि आहिनि, माना ईअं सोचे त मुंहिंजे लाइ उहो क़ाबिले एतिरा मञी में तव्हां आयो साईं, नंबर।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अली गुल कटबार साहब, तव्हांजो तमामु घणो थैंक्स। मां तव्हांखे हाणे गानो थो ॿुधायां, तेरा मेरा है प्यार अमर। कंहिंजे नाले था करणु चाहियो?
2: मुंहिंजा नंढा नवेश गुल, अब्बास गुल, ऐं सोना खान मस्तोई, ऐं जेके दोस्त आहिनि भुटा बिरादरी, जेके दोस्त मुंहिंजा मुबारकपुर में, सभिनी खे सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम अली गुल कटबार साहब, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। थैंक यू सो मच अली गुल कटबार भाई हमारे साथ मौजूद है। जनाब आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। देर किस बात की है, हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होता। आप अपने मकासिद को, अपने जो है दिल में जो छुपी बातें, उनको अमली जामा पहनाइए और हमारे साथ आ जाइए हमारे साथ शो में। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
0: केर असां सभिनी सां गॾु मामा जमालदीन।
2: जमाल
0: ॾिसो मामा, तव्हांखे मां सुञाते सुञाणे वियो आहियां।
2: हा
0: ॿियो ठीकु ठाक जमालदीन भयो साहब, ठीकु ठाक आहियो?
2: अलहमदुल्ला शुक्र
0: आहे। हां जी सभु ठीक ठाक, तव्हां ॿुधायो कहिड़ा हाल चाल आहिनि, ठीकु आहियो? मां गानो हलाए चुको आहियां, तेरा मेरा है प्यार अमर, हिकिड़े अदे जी फरमाइश आहे हबीबुल्ला थेबो जी। कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? जी जी वालेकुम अस्सलाम जमालदीन भयो साहब, तव्हां तमामु घणो थैंक्स। असां प्ले करे चुका आहियूं तमामु घणो हिट नंबर, इश्क मुर्शद जो ओएसटी आहे, हिन हिट नंबर खे ॿुधो ऐं खोड़ सारो एंजॉय कयो।

चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जबरदस्त होंगे, क्योंकि जनाब हम आपके साथ हैं तो आपके गड़बड़ेशन की तबीयत गड़बड़ेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बिल्कुल जनाब, कभी कभी लाइफ में ऐसे लोग लग जाते हैं मत्थे में तो कि आप भी कहते हैं कि यार ये सडनली हो क्या रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप कभी भी परेशान मत हो, चाहे कैसे भी क्यों लोग आपके मत्थे ना लग जाएं, आप उनको अपनी समझदारी से हैंडल कीजिएगा। तो जनाब अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ चुके हैं और एक बात दिल में रख लीजिए कि खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी खुशी की जरूरत नहीं होती है, कभी एक अच्छा इंसान, एक खूबसूरत बात और एक सच्ची मुस्कुराहट भी काफी होती है। इसीलिए मुस्कुराइए, माफ कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए और अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए, क्योंकि मोहब्बत जब दिल में रह जाए तो सिर्फ एहसास होती है और जब लव्स बन जाए किसी की जिंदगी की खूबसूरती बन सकती है। और जनाब शाम का आखिरी गाना भी चलाएंगे, हमारे से एक दोस्त ने फरमाइश की थी कि अहमद मुगल का गाना चलाएं, तो हम बिल्कुल अहमद मुगल का गाना भी चलाएंगे और वो गाना उन तमाम लोगों के नाम जो मोहब्बत पर यकीन रखते हैं, दोस्ती को अहम समझते हैं और जिंदगी को मुस्कुराकर जीना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की शाम हमने अपने तमाम दोस्तों के नाम की और आई लव यू ऑल जो है आपका अपना प्रोग्राम है और सबने अपनी अपनी मोहब्बत का, अपने चाहत का, अपने खलूस का इजहार किया हमारे साथ। तो जनाब मोहब्बत क्या है? मोहब्बत है किसी की बात सुन लेना, किसी को माफ कर देना, किसी की मदद कर देना, किसी का हौसला बन जाना और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना। तो आज रात सोने से पहले अपनी जिंदगी के किसी एक खूबसूरत इंसान को ये जरूर कहिएगा कि तुम मेरी जिंदगी हो। बिल्कुल जनाब, अब आप सुन रहे हैं GFM 88, ये था आपका अपना प्रोग्राम आई लव यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का खास ख्याल रखिए और मोहब्बतें बांटते रहिए और GFM 88 सुनते रहिए, क्योंकि जहां आवाज सिर्फ कानों तक नहीं दिल तक पहुंचती है। तो जनाब दिल की आवाज आपके साथ हम शेयर करते हैं एक बहुत प्यारा सा गाना, इस गाने को सुनिएगा और अशफाक नियाज़ी को दीजिएगा इजाजत, रखिए अपना बहुत बहुत बहुत बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे तक का वादा है आपसे मिलने के लिए, नेक्स्ट फ्राइडे को फिर मिलेंगे अल्लाह ने के बाद।

0: एम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नकवी जो चवण हो त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे फैसले खां पोइ कंहिं बि सूरत में मुल्क जे गादी वारे शहर ते काह नथी करे सघिजे। कंहिं अदालती फैसले जी भञकड़ी कई त तो इन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल कई वेंदी। जवाननि खे ॿुधाए छॾियो आहे त ईअं न थींदो त गोलियूं हलनि ऐं तव्हां ख़ामोश थी वेही रहो। उहाट में दहशतगर्दीअ जो अफ़सोसनाक वाकियो थियो। तव्हांखे नथो सूहे त हिकु तरफ़ शहीदनि जा जनाज़ा खजनि ऐं ॿिए पासे धरणनि जी तयारी कयो। खैबर पख्तूनख्वा जे शहर कोहाट में दहशतगर्दनि जो पुलिस लाइन्स जी मस्जिद ते अपघाती हमिलो ऐं फायरिंग। पंज पुलिस अहलकारनि समेत 16 शहरी शहीद थी विया, 70 खां वधीक ज़ख़्मी थी पिया। पुलिस जी जवाबी कार्रवाईअ में 6 दहशतगर्द बि मारिजी विया। आईजी KP चयो आहे त दहशतगर्दनि जा हमला हौसला घटाए नथा सघनि। सदर आसिफ़ सरदारी, वज़ीर आज़म घरू वज़ीर मोहसिन नकवी, KP जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी ऐं ॿियनि पारां वाक़िए जी मज़म्मत। ज़ख़्मियुनि खे तिबी सहूलियतूं ॾियण जी हिदायत।
4: पाकिस्तान पुलिस एंड With the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi government. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters. There should be no doubt on that.
3: सऊदी अरब जी सलामतीअ ते ठाह नथो करे सघिजे। सऊदीअ जी सलामती लाइ पाकिस्तान हर हद पार करण लाइ तयारु आहे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी अरब टीवीअ खे इंटरव्यू ॾींदे चयो त सऊदी अरब जी सिक्योरिटीअ लाइ पाकिस्तान जो अज़म गैर मशरूत आहे। कंहिं बि जारहाणनि क़दमनि ख़िलाफ़ सऊदी भाइरनि सां गॾु बीठल आहियूं। पाकिस्तान हरमैन शरीफ़ जी हिफ़ाज़त लाइ उते मौजूदु आहे। कंहिं बि जारियत ख़िलाफ़ सऊदीअ जो दिफ़ा कंदा रहंदासीं। यमन में सरकारी फ़ौज ऐं हुसन जी तंज़ीम अंसारुल्ला में झड़पूं, 63 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी। यमनी सरकारी फ़ौज मूजिबि अंसारुल्ला जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो आहे, जंहिं जे नतीजे में हुसन जो घणो जानी ऐं माली नुक़सान थियो। केतिरनि ई हंधनि तां बाग़ी फरार थी विया आहिनि।

0: ईरान जंग बाबति वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां, ॿीहर जंग शुरू करे ईरान खे तबाह करण वारो फ़ैसिलो बि थी सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान मुआदो करण चाहे थो पर हिन वक़्तु मुआदे लाइ तयार न आहे। असां अहिड़ो मुआदो कंदासीं जेको असां लाइ बहितर हूंदो। अमरीका ईरान जी एटमी मेज़ाइल सलाहियत ख़तम करे छॾी आहे। सऊदी अरब ते हमला यूए जी खुशहाली ऐं सलामतीअ लाइ ख़तरो आहिनि। बहरान जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू कयो वञे। यूए जे सदारती सलाहकार अनवर करगाश चयो आहे त ईरानी सदर सां वली अहद जी मुलाक़ात में माज़ीअ खे विसारे अॻिते वधण ते तफ़ाक़ थियो। मुस्तक़बिल लाइ पहिरियों क़दम हमला रोकणु हुजणु घुर्जे। सिंध असेंबली मका मुकरमा ते ड्रोन हमले ख़िलाफ़ मज़हमती ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशन अथॉरिटीअ जो तरमीमी बिल बि मामी मेंबर सजाद अली पारां बिजलीअ जी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ ठहराउ पेश। साबिर क़ाइम ख़ानी ध्यान छिकायो नोटिस ते ॻाल्हाइण जे बाद में पीअण जे पाणी जो शदीद बोहरान पैदा थी वियो आहे। सिंधु दरिया जे कप ते हुजण बावजूद
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी।

0: छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
0: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03132525786।
0: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: धर्माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी, خدا پولیو رنز دا کدمونو درولی هم شی، نو پدی وجا دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو تیم دا دروازی تکولو جواب ورکوی، او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی، زکه چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز جاتوی او دا هغی دا خوبون والوت وزری مومی. پولیو یعنی مستقل مازوری.
3: मातली या आसपास की अवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
9: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
9: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03132525786।
9: जी हा, 2315-2575-786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: दी पुरानी पुलिस लाइन जी गेट से टकराने का पोए फायरिंग कई वही जैं दौरान एक बो अपघाती धमाको थो पुलिस ए सीटीटी से फायरिंग की डेवट में सत में छह दहशतगर्दन के मारे वो धमाके सबब मस्जिद के बहरें हिस्से के नुकसान पौतो ए भित बिकरी पई केपी के वे वजीर सोहेल आफरीदी कोहाट धमाके जो नोटिस वे पुलिस अमलदारन का रिपोर्ट तलब कर वरती सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम वफाकी गरू वजीर मोहसन नकवी पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ए बेन पारा दहशतगर्द हमले की मसम्मत
4: लोग झूठ प्रोटेस्ट करें प्रोटेस्ट अगर आप अपने इलाके में करें अपने शहर में करें लेकिन इस तरह आपके प्रतिक्रम को बंद करने की प्लानिंग करना या किसी सूबे के ऊपर इस तरह जाके हमला करना ये भी किसी भी तरीके से जायज नहीं हो सकती आपको इस तरह के वाकयात के बाद वैसे भी आपको जोर नहीं देता कि एक तरफ आप चौदह के जनाजे उठाएं और दूसरी तरफ आप धरनों के ऊपर तैयारी करें कोई भी इसी पे बंदा बैठा हो उसका ये फर्ज है कि हमने जानो माल की तहफ़ करना है और इस्लामाबाद और अपनी टेरिटरी और इस तरह के प्रोटेस्ट को हर सूरत में रोकना है ये जो जलवार करने वाली जत्थे इसमें फर्क होता है बाद हर तरह से इकट्ठे होकर आना ये क्लैरिटी है कि एक भी अल्लाह ना करे जान जाती है तो इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं मुल्क का नुकसान है हमारी इकॉनमी का नुकसान है सबके सब तैयार है और हम किसी भी सूरत में एक दफा वो बदमनी नहीं फैलाने लेंगे जो माजी में लोग फैलाते रहे
3: गरु वजीर मोहसन नकवी चुका है तो एहतजाज के नाले से इस्लामाबाद मथा हमले की इजाजत नहीं दे सके सोशल मीडिया ते गाल थी रही है तो मखसूस कबीलन जा मानू अची रहा है मानू या चंदो जमा करण बदरा दहशतगर्दी खिलाफ जंग ते ध्यान होजन घुर्जे कंखे एहतजाज करणो है तो पांजन इलाकन या शहरन में करे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसन नकवी चयो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का पोए कें भी सूरत में इस्लामाबाद ते काह नथी करे सके कें अदालती फैसले की भंज कड़ी कई तो इन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कई वेंदी जवानन के बुधाए छो है तो इं न तो गोलू हलन ए तव खामोश थी वेही रहो कोहाट में दहशतगर्दी जो अफसोसनाक वाक्यो थो तवे नो सूहे तो एक तरफ शहीदन जा जनाजा खजन ए बे पास धरणन की तैयारी कयो वफाकी सरकार लॉन्ग मार्च के नजर आडो रखन्दे इस्लामाबाद में रेड जोन सील करण जो फैसलो करे वरतो रेड जोन डां वेंदड़ सभी पंज रस्ता मुकम्मल तौर से बंद कया वेंदा जरियन मूजिब रस्तन ते कंटेनर जो ब कतारू लगाए वडी नफरी मुकर कई वेंदी एक्सीडेंट रेड जोन के सील करे रुगो हंगामी हालत में खोलो वेंदो

सखर के आबाद थाने के हद में डोहारन पुलिस विच में मुकाबलो एक अहलकार शहीद। न्यू बस टर्मिनल मुकाबले दौरान फायरिंग की डेवट में कांस्टेबल मोहम्मद अकरम चाचड़ शहीद थी वो। मड अस्पताल मुंतकिल एसएसपी सखर भी अस्पताल पहुंची वो।

0: तो मेरी गोल्ड बोला ना बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन जे
1: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: सोचे रहे आयो
1: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
0: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
1: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
0: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252578 6
1: जी हा 231 25 25 786
0: जीएफएम रेडियो नेटवर्क

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जेकर तवाखे मैदे जी तकलीफ, सीने जी जलन, खट्टी उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसाला आहिन, हाँ परेशान थियण की जरूरत न आए। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलन लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
4: करो छो।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन ऐं पेंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
3: जी हाँ, बुड़ी 331-25-25-786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप लोग जरूर प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट अगर आप अपने इलाके में करें, अपने शहर में करें, लेकिन इस तरह आपके सर्टिंग कैपिटल को बंद करने की प्लानिंग करना या किसी सूबे के ऊपर इस तरह जाके हमला करना ये किसी भी तरीके से जायज नहीं हो सकती आपको। इस तरह के वाकयात के बाद वैसे भी आपको जोर नहीं देता कि एक तरफ आप शोभा के जनाजे उठाएं और दूसरी तरफ आप धरने के ऊपर तैयारी करें। कोई भी इसी पे बंदा बैठा हो उसका ये फर्ज है कि हमने जान और माल की तहफ़ करना है और इस्लामाबाद और अपनी टेरिटरी और इस तरह के प्रोटेस्ट को हर सूरत में रोकना है। ये जो जलवार करने वाली जत्थे इसमें फर्क होता है। बाद हर तरह से इकट्ठे होकर आना ये क्लैरिटी है कि एक भी अल्लाह ना करे जान जाती।
1: If your work sprawls across multiple apps, you need ClickUp.
2: Yeah, you do.
1: It's a single place.
0: नुकसान है, हमारी इकोनॉमी का नुकसान है, सबकी सब तैयार है और हम किसी भी सूरत में एक दफा ये बदमनी नहीं फैलाने लेंगे जो बाजू में लोग फैलाते रहे।
3: वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी चयो आहे त एहतजाज जे नाले ते इस्लामाबाद मथां हमले जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। सोशल मीडिया ते ॻाल्हि थी रही आहे त मख़सूस कबीलनि जा माण्हू अची रहिया आहिनि। माण्हू या जंग ते ध्यानु हुजणु घुर्जे। कंहिंखे एहतजाज करणो आहे त पंहिंजनि इलाइक़नि या इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नकवी वधीक चयो त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे फैसले खां पोइ कंहिं बि सूरत में इस्लामाबाद ते काह नथी करे सघिजे। कंहिं अदालती फैसले जी भञकड़ी कई त तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल कई वेंदी। जवाननि खे ॿुधाए छॾियो आहे त ईअं न थींदो त गोलियूं हलनि ऐं तव्हां ख़ामोश थी वेही रहो। कुहाट में दहशतगर्दीअ जो अफ़सोसनाक वाकियो पेश आयो। तव्हांखे नथो सूहे त हिक तरफ़ शहीदनि जा जनाज़ा खजनि ऐं ॿिए पासे धरणनि जी तयारी कजे।

0: वफाकी सरकार लॉन्ग मार्च के नजर आडो रखंदे इस्लामाबाद में रेड जोन सील करण जो फैसलो करे वरतो। रेड जोन ना वेंदड़ सभी पंज रस्ता मुकम्मल तौर बंद कया वेंदा। ज़रियन मूजिब रस्तन ते कंट्रेन जो ब कतारू लगाए वड़ी नफरी मुकर कई वेंदी। एक्सटेंडेड रेड जोन के सील कर रुगो हंगामी हालतुन में खोलो वेंदो।
1: Police stands with the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi people. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters.
0: सऊदी अरब जी सलामती ते ठाह नथो करे सघजे। सऊदीअ जी सलामती लाइ पाकिस्तान हर हद पार करण लाइ तयार आहे। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी अरब टीवीअ खे इंटरव्यू ॾींदे चयो त सऊदी अरब जी सिक्योरिटीअ लाइ पाकिस्तान जो अज़म गैर मशरूत आहे। कंहिं बि जारहाननि क़दमनि ख़िलाफ़ सऊदी भाइरनि सां गॾु बीठल आहियूं। पाकिस्तान हरमैन शरफेंट जी हिफ़ाज़त लाइ उते मौजूद आहे। कंहिं बि जारियत ख़िलाफ़ सऊदीअ जो दिफ़ा कंदा रहंदासीं। यमन में सरकारी फ़ौज ऐं हुसैन जी तंज़ीम अंसार उल्ला में झड़पूं। 63 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी। यमनी सरकारी फ़ौज मूजिबि अंसार उल्ला जे ठाकनि खे निशानो बणायो वियो, जंहिंजे नतीजे में हुसैन जो घणो जानी ऐं माली नुक़सान थियो आहे। केतिरनि ई हंधनि तां बाग़ी फ़रार थी विया आहिनि। ईरान जंग बाबति वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां। ॿीहर जंग शुरू करे ईरान खे तबाह करण वारो फ़ैसिलो बि थी सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान मुआदो करणु चाहे थो, पर हिन वक़्त मुआदे लाइ तयार नाहे। अहिड़ो मुआदो कंदासीं जेको असां लाइ बहितर हूंदो। अमरीका ईरान जी एटमी मिज़ाइल सलाहियत ख़तम करे छॾी आहे। सऊदी अरब ते हमला यूएई जी खुशहाली ऐं सलामतीअ लाइ ख़तरो आहिनि। बहरान जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू कयो वञे। यूएई जी सदारती सलाहकार अनवर करगाश चयो आहे त ईरानी सदर सां वली अहद जी मुलाक़ात में माज़ीअ खे विसारे अॻिते वधण ते इतफ़ाक़ थियो। मुस्तक़बिल लाइ पहिरियों क़दम हमला रोकणु हुजणु घुर्जनि। सिंध असेंबली मका मुकरमा ते ड्रोन हमले ख़िलाफ़ मज़ामती ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटीअ जो तरमीमी बिल बि मंज़ूर। पीटीआई जे हामी मेंबर सजाद अलीअ पारां बिजली जी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ ठहराउ पेश। साबिर क़ाइमखानी ध्यानु छिकायो नोटिस ते ॻाल्हाईंदे चयो त हैदराबाद जे इलाइक़े लतीफ़ाबाद में पीअण जे पाणीअ जो शदीद बुहरान आहे। सिंधू दरिया जे कप ते हुजण बावजूद रहवासी गदलो पाणी वापराइण ते मजबूर आहिनि।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: मातली आसपास की अवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन

0: पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
1: जी हा, 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ, रही न दूर तड़पायो, दिल जी गाल करनी आ। चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ, रही न दूर तड़पायो, दिल जी गाल करनी आ। रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐं सचाई, लबनते मुर्का विखरियल दिलन में आबे आई। चाहत जा चंग वजायो, दिल जी गाल करनी आ। चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ। कराची खां कश्मीर, कींझर खां कारूंझर ताईं सुहिणी सिंधवासनि खे अब चौहान जो सिक भरियो सलाम कबूल पवे। प्रोग्राम दिल जी गाल सां गॾु आहियां अब चौहान ऐं अवां ॿुधी रहिया आहियो GFM नेटवर्क।

GFM नेटवर्क ऐं दिल जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि सभी मानायतन महबूबन दिलबर दिलरुबा दोस्तन खे वेलकम भलीकार खुशामदी।

मुखी जो जीअं मट अलाए काॾे वियो, मोखीअ जो जीअं मट अलाए काॾे वियो, वाणे जो तीअं हट अलाए काॾे वियो। मोखीअ जो जीअं मट अलाए काॾे वियो, वाणे जो तीअं हट अलाए काॾे वियो। थोरो हुन ॾे हथ वधायमि वेझो थी, थोरो हुन ॾे हथ वधायमि वेझो थी, गुलड़े तां पोपट अलाए काॾे वियो। हाणे हाणे बंदि कयां पियो हथ में हो, हाणे हाणे बंदि कयां पियो हथ में हो, नंढड़ो हिकड़ो नट अलाए काॾे वियो। पियाकनि खे एॾो उल्को ॾेई आख़िर, पियाकनि खे एॾो उल्को ॾेई आख़िर, गोरी तुंहिंजो घटि अलाए काॾे वियो।

पियो ठरंदो हो। उते मरंदो गरंदो ऐं पियो ठरंदो हो। चरियो हिकड़ो जट अलाए काॾे वियो। तुंहिंजा सारा वेण अञा बि उकरियल आहिनि, तुंहिंजा सारा वेण अञा बि उकरियल आहिनि। तुंहिंजो अर्पियल फट अलाए काॾे वियो। ॻाल्हि ॻाल्हि ते केॾो विछड़ी वेंदो हो, ॻाल्हि ॻाल्हि ते केॾो विछड़ी वेंदो हो। कोरो हिकड़ो जट अलाए काॾे वियो। आज़ादीअ जो साह खयमि महसूस थियो, आज़ादीअ जो साह खयमि महसूस थियो। यार ॻिचीअ मां गट अलाए काॾे वियो। मोखीअ जो जीअं मट अलाए काॾे वियो। वाणे जो तीअं हट अलाए काॾे वियो।

उन खां अग असां शामिल कंदासीं हिकड़ो खूबसूरत ट्रैक अवां सभिनी महबूबनि जे नाओ म्यूज़िक जी दुनिया जे उस्ताद उस्ताद नुसरत फतेह अली ख़ान जी ख़ूबसूरत आवाज़ में प्यार भरियो ट्रैक अछो त गॾिजी इंजॉय कयो।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम हिकु नई दुनिया ॾांहुं वधनि था, पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके बि सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
3: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि? त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, 247-32।
8: आवाज़ है।
9: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 0331252578 6।
5: जी हा 2315525786
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ए किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जो पक्यू छिटू लगरा लाए खुशखबरी छा चाहो था अवां जे घरन जो छिटू पक्यू हुजन त केश ए किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छिटू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ए सस्ते में सस्ती छित लगराण लाए राबतो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ए बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347321230।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।